0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान में वोकला के एक ग्रुप ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और वॉशिंगटन से कहे कि वो बैन अल-अक्वामी फौजदारी अदालत ICC की जापानी सरबराह के खिलाफ आयद पाबंदियां वापस ले। वोकला ICC की सदर अकाने तोमोको के उस दौर के तालिब इल्म हैं जब वो वस्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर में कानून के स्कूलों में पढ़ाती थीं। अगस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ICC की क्यादत पर यह इल्जाम लगाते हुए पाबंदियां आयद की कि वो बदनीयती के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन पाबंदियों में अमरीका में अकाने के असासों को मुंजमद करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकला के इस ग्रुप ने तकरीबन 1,74,600 दस्तखत ऑनलाइन हासिल किए और जुमेरात को डेप्टी चीफ काबीना सेक्रेटरी ओजाकी मासानाओ को पिटिशन और दरखास्ती खत पेश किया। खत में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो वाजह तौर पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का इजहार करे और इन्हें हटाने के लिए ठोस बातचीत करे। जापान में कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने कारकुनों को सार्फीन या कारोबारी शराकतदारों की तरफ से हिरासा किए जाने या बदसलूकी से बचाने के लिए इकदाम करना लाजमी है। सार्फ की जानिब से हिरासा किए जाने की तारीफ ऐसे रवैये के तौर पर की जाती है जो समाजी तौर पर काबिल कबूल उसूलों से मुतजाविज हो। इसमें मसनूआत और खिदमात से गैर मुतल्लिका मुतालबात करना, कारकुनों को घुटने टेक कर मुआफी मांगने पर मजबूर करना, नीज चीख चीख कर डराना धमकाना शामिल है। लेबर पॉलिसी प्रमोशन कानून में की गई एक तरमीम कंपनियों को पाबंद करती है कि वो ऐसी बदसलूकी का सख्ती से जवाब दें और अमले के तहफ्फुज की अपनी पॉलिसियों को मंजरे आम पर लाएं। कंपनी पर लाजिम होगा कि वो हिरासा किए जाने वाले कारकुन को सूरत हाल से अकेले निमटने की इजाजत ना देने जैसे उठाए जाने वाले इकदामात से अमले को मुत्तला करे। कंपनियों के लिए मुशावरती बूथ कायम करना भी जरूरी होगा और मुतासरीन की नफसियाती इमदाद करनी होगी। इकदामात नाफिज ना करने वाली कंपनियों के लिए एक मुमकिना सजा ये हो सकती है कि उनके नाम अवामी सतह पर इफ्शा कर दिए जाएं। अमरीकी खबर रसा मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 सबसे ज्यादा बाअसर उभरते सितारों की अपनी सालाना फहरिस्त में क्योतो के यावाता सिटी की मेयर कावाता शोको का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने बुध के रोज टाइम 100 नेक्स्ट 2026 फहरिस्त का ऐलान किया जिसमें ऐसे रहनुमाओं को शामिल किया गया है जो समाजी सरगर्मियों, तफरीह और खेलों समेत अपने अपने शोबों में मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहे हैं। साल 2023 में कावाता शो को 33 साल की उम्र में यावाता शहर की क्यादत के लिए मुंतखब होकर जापान की अब तक की सबसे कम उम्र खातून मेयर बनी। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में बजाहिर एक मामूली फैसले यानी जचगी की छुट्टी लेने पर दोबारा तारीख रकम की है। मैगजीन निशानदही करता है कि अगरचे जापान कारकुनों को जचगी की छुट्टी फराहम करता है लेकिन मुंतखब मेयर्स इन लेबर सहूलियात से बाहर हैं, इसलिए अमल करने के लिए किसी साबिका नजीर की अदम मौजूदगी में कावाता ने एक नई मिसाल कायम की। मैगजीन का कहना है कि उन्होंने 16 हफ्तों के लिए अपने इख्तियारात डिप्टी मेयर को मुंतकिल कर दिए और इस दौरान दूर बैठे ब्रीफिंग्स में शिरकत जारी रखी और अहम फैसलों में भी शामिल रहीं।
1: सामिन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ लाएं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। एनएचके को पता चला है कि सरकार ने जापान की संभावित वैकल्पिक राजधानी के लिए मसौदा आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। संभावना है कि नामित शहर टोक्यो में कोई बड़ी आपदा आने की स्थिति में सरकार चलाने का एक वैकल्पिक केंद्र बनेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय 4 शहर सापोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका मसौदे की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जुलाई में संसद में संबंधित कानून पारित होने के बाद सरकार एक अध्यादेश को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है, जो वैकल्पिक राजधानी के दर्जे से जुड़ी खास शर्तें तय करेगा। इन मसौदा आवश्यकताओं में से एक ये है कि उम्मीदवार शहर उन इलाकों से बाहर होना चाहिए जिन्हें सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है जहां टोक्यो के ठीक नीचे महाभूकंप या फुजी पर्वत में संभावित विस्फोट का असर पड़ सकता है। एक शर्त यह है कि उम्मीदवार शहर की आबादी देश की कुल आबादी का कम से कम 1.2% होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार शहर के प्रीफेक्चर का सकल घरेलू उत्पाद जापान की जीडीपी का 2.1% या उससे अधिक होना चाहिए। उम्मीदवार शहर ऐसा होना चाहिए जो केंद्र सरकार के 28 प्रकार के शाखा कार्यालयों में से कम आधे कार्यालयों की मेजबानी पहले से कर रहा हो। इसके अलावा उसे टोक्यो की 23 वार्ड इकाइयों जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने होंगे। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के 1 महीने से अधिक समय बाद भी नेपाल में राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। मृतकों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती है जिसमें जापान सरकार मदद कर रही है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि 26 अगस्त की इस आपदा में 1400 से अधिक लोग मारे गए जबकि 5200 से अधिक लोग लापता हैं। 2 सप्ताह तक जापानी दल ने बरामद शवों से उंगलियों के निशान और डीएनए के नमूने इकट्ठे किए। अब तक लगभग 110 शवों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। ये आंकड़ा मृतकों के 10% से भी कम है। कई शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके हैं। नेपाल में जापानी दूतावास के उप प्रमुख शिंतो यासुहारू ने कहा कि पीड़ितों की पहचान करना एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा, नेपाल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और लापता लोगों में विदेशी नागरिक भी हैं। हमें इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। जापान सरकार डीएनए जांच उपकरण उपलब्ध कराने तथा नेपाल में और विशेषज्ञ भेजने की योजना बना रही है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चरमपंथी गुटों के शिविरों और ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं जिनमें 22 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने 2 जगहों पर सटीक हमले किए। उसका कहना है कि चरमपंथी अफगानिस्तान से सीमा पार करके पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता ने भी बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। प्रवक्ता ने लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने पूर्वी प्रांत कुनार और दक्षिणी प्रांत हेलमंद में मकानों पर बमबारी की जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 9 नागरिक मारे गए। प्रवक्ता ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें सभी स्वीकृत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला आक्रमण और अपराध बताया। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब भी आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, जबकि तालिबान इस दावे का खंडन करता है।
1: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में वकीलों के एक समूह ने सरकार से अमेरिका के साथ बातचीत करने और अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की जापानी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए एक याचिका सौंपी है। ये वकील आईसीसी अध्यक्ष अकाने तोमोको के पूर्व छात्र हैं। अकाने पहले मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रीफेक्चर में लॉ कॉलेजों में पढ़ाया करती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अगस्त में आईसीसी के आला अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाकर न्यायालय पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इन प्रतिबंधों में अमेरिका में अकाने की परिसंपत्तियां फ्रीज करना भी शामिल है। इसके जवाब में वकीलों के समूह ने ऑनलाइन लगभग 1,74,600 हस्ताक्षर एकत्र किए और बृहस्पतिवार को मुख्य कैबिनेट उपसचिव ओजाकी मासानाओ को याचिका और एक अनुरोध पत्र सौंपा। अनुरोध पत्र में सरकार से अमरीकी प्रतिबंधों का स्पष्ट विरोध करने और उन्हें हटवाने की दिशा में ठोस चर्चा करने का आह्वान किया गया है। जापानी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों द्वारा उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से उपाय करने होंगे। ऐसे व्यवहार को ग्राहक द्वारा उत्पीड़न माना जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ग्राहक द्वारा ऐसी मांगे करना जिनका उत्पादों या सेवाओं से कोई लेना देना न हो, कामगारों को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर करना और ऊंची आवाज में चिल्लाकर डराना धमकाना आदि कृत्य उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। श्रम नीति प्रोत्साहन कानून में संशोधन के बाद अब कंपनियों को इस तरह के दुर्व्यवहार से दृढ़ता से निपटने और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को सार्वजनिक करना होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ये भी बताना होगा कि उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे उत्पीड़न का शिकार हो रहे कर्मचारी को अकेले स्थिति से निपटने न देना। कंपनियों को परामर्श केंद्र स्थापित करने और पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। उपायों को लागू करने में विफल कंपनियों का नाम दंड स्वरूप सार्वजनिक भी किया जा सकता है। अमरीकी समाचार पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों की वार्षिक सूची में क्योतो के यावाता शहर की महापौर कावाता शोको को जगह दी है। पत्रिका ने बुधवार को टाइम 100 नेक्स्ट 2026 सूची की घोषणा की, जिसमें उन अग्रणी लोगों को शामिल किया गया है जो सामाजिक गतिविधियों, मनोरंजन और खेल सहित अपने अपने क्षेत्रों में भविष्य को आकार दे रहे हैं। कावाता शोको 2023 में 33 वर्ष की आयु में यावाता शहर की महापौर चुनी गई थी, जिसके साथ ही वे जापान की सबसे युवा महिला महापौर बन गई थी। पत्रिका के अनुसार कावाता ने इस साल की शुरुआत में मातृत्व अवकाश लेने जैसे एक साधारण से फैसले से एक बार फिर इतिहास रचा। पत्रिका के अनुसार जापान में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन निर्वाचित महापौर इस सुविधा के दायरे में नहीं आते। पहले ऐसी कोई मिसाल न होने पर कावाता ने खुद ये मिसाल कायम की। पत्रिका का कहना है कि कावाता ने 16 सप्ताह के लिए अपने अधिकार उप महापौर को सौंपे और ऑनलाइन बैठकों में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।